चोच को गो बलगा मिजू दे अया बलगा हो बल बल पगा ही ना दी चारनी दे उबरीन तोर बाहिन सुतखलो बल ना थेप्स थेप्स और नीला थी जे पी गुगुने साली गोलगम चलो जे भी देख किलो तो लो मं हदी हदी हो दे तेरे ऐसला तो उख हरवा बलगा तो बल भी यामर ऐमिशो को शिंजी बल ना किलो तो चिंशांग ही बायलेंगी जा